0: गुड न्यूज एफएम 105.1
1: विश्वास सुनैबाट आउँछ गुड न्यूज एफएम रेडियो 105.1 मेगाहर्ज।

0: जिस दाते हैं ध्यान बीमा अले परमेश्वर स्वकता का यो सुया तो बल्ला मो साहसी जुत धाल जीवो साहस गन वे जीवो रुआपु रुआ तो परमेश्वर झी नाप दूध का सीका थो वही इस पी छोगो अध्याय जीवो पद के ठाटो गुदो अथे जुया या मते छादासा जी छना पे दो नुग कोतुंग के मते छादासा जी हे छिमी परमेश्वर ख जी छंत बल्ला के जी छंत गुहाली या जीवो धार्मिकता या जौ लात जी छंत टी बी छिगो मंस ताथे जुई श्वेत मागो मेहनत याए तो ज्ञामते छिस छुहे मयागु गुब्ले दक्ले तंग असफलता ओ दक्ले थाकुगु पहाड़ था गछे आगु अप्प धया थे बालागु नतीजा ओ अले जिस थगु लक्ष्य पुओं के सफलता या अनुभव याई बोले जिस दक्ले बालागु पला दैगु उगु घटना पाखे सेकेगु हनेगु कुत याएगु ख सफलता क्या त थुगु श्रोता ख पालना याना दिस परमेश्वर छित बिउगु दर्शन या लिउलिउ उना दिस दुनुग्ल निसे थुकी या त पुवंका दिस गुब्ले गुब्ले गुब्ले न बुई मते यो पि नेन मेपी यहोसु इजरायली या त परमेश्वर वचन बियादिगु देशे यंकल अले परमेश्वर वचन बियादिगु थे इम्त सफल याय त छगु लिपा मेगु आजु पुचागु ज्या याना दिल छिगो मंस पुके तन क्षमता परमेश्वर ए छित बिगुदु क्यागु ख छित पने बिमते बल्ला ओ साहसी जुया दिस थो ख सिके कि सु यह सुनाप दुम ख वोहे छिगु रापु रुआ त छिनापन दु थोयागु वचन येना दिगुनी छि सकसित न परमेश्वर सुब्या बिमा जयमसी यनमिपि छिमस नकतिनी हे जक बाइबलिया प्रभावशाली शिक्षक व आत्मिकी लपु केना दिम सोमन भिक्टर चोयादिगो हसना जिगु हे नेपाल भाषा या रेडियो ज्याजो स्पार्क माइ फेथ जिगु विश्वास के चमखया बिउ बारे छिके छु प्रतिक्रिया सुझाव दुसा स्वापु तया दिफै उकिया नीति जिम के जिमगो मोबाइल नम्बर 2 98 68 55 33 39 98 68 55 33 39 कासा ज्याजो नेना दिगुनी छित यकु यकुए सुब्या परमेश्वर छित सवाबीमा जय मसी।
1: अब प्रस्तुत छ कार्यक्रम रोचक जानकारीको पुनः प्रसारण।